0: यो युटाल मोदी के एल्बम दौड़तनूरा उदिन तो मजा देखो मारा ना वो विरक का यंगले मुगो नमरो मारा मा लोकल स्टोर्स दे कम्युनिटींगो या को दो एल्बम दा गोवाक का बलन्या
1: चेक इट आउट
2: यो दा पेर